0: రంగా రెడ్డి మీరు ఎవరెస్ట్.
1: स्वर्गदारी चलचित्र मन्दिर घोराई दाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेका छन्. नेपाली कथानाक चलचित्र चमेलीको पोई.
2: ए
1: बा एक एउटा पेन्सन पट्टा.

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: महाचार महापहार
2: Xiaomi व Redmi को फोन किन्दा उपहार नै उपहार
3: यो दशैं तिहारमा Xiaomi व Redmi को लेटेस्ट फोन किनी MI स्पेस IMEI नम्बर टाइप गरी WhatsApp मार्फत पठाउनुहोस् र हरेक दिन 8 जनालाई Redmi Buds 6 Pro हरेक हप्ता 10 जनालाई Redmi Watch 6 Active अनि बम्परमा 4 जना विजेतालाई Thailand Holiday यो योजना मङ्सिर 9 गते सम्म मात्र आजै नजिकैको Xiaomi डिलरमा सम्पर्क गर्नुहोस्
4: Xiaomi किन्दा उपहार एभ्रीडे बम्पर मा थाइल्यान्ड हॉलिडे
5: मध्यपश्चिम टाइम चेक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।